0: cricket. In India, it's more than a sport. It's closer to a religion. From dusty streets to shiny sold-out stadiums, millions watch and play. Yet, it's long been a man's game, while women's cricket faced dire neglect.
1: Number of matches nahi the, facilities nahi thi, wajah se pressure hamesha rehta tha, kya hum upper level ka cricket khel payenge, nahi khel payenge.
2: There were no spectators. No one knows that women cricket exists.
0: But a radical change has unfolded in India. A World Cup win for the national women's team and a glitzy new league worth more than $100 million.
3: I was at the World Cup final, seeing that packed stadium, thinking, I don't know when this change has happened.
2: A lifetime achievement.
0: 101 East follows India's women cricketers as they emerge from the shadows and into the spotlight. On a chilly morning in the northern Indian city of Chandigarh, Tanisha Singh is getting ready for a match. She's leading the Delhi under-23 team at the prestigious national championship.
4: So my dream will be to play from India and world ki sabse best all-rounder banu.
0: One way to fast-track that dream is to get selected for India's Women's Premier League or WPL.
5: We are at a junior girls tournament where teams from across the country have come to play. But there's more at stake here than just this tournament, because here the girls are hoping that they'll be picked by some of the big Premier League teams, and the auction is just days away.
0: The WPL, in its fourth season, is already the richest women's cricket league in the world and the second most lucrative women's league in any sport globally. Tanisha's name is on the list from which clubs will bid for players in an auction. But this morning, her focus is on the match.
4: मैं नहीं सोच रही हूँ. It just ऐसा है कि अगर मेरा नाम आएगा, मुझे तब भी मेहनत करनी है, और मेरा नाम नहीं भी आएगा, मुझे तब भी मेहनत करनी है.
0: It was Tanisha's father who introduced her to cricket.
4: मैं 9-10 साल की थी और मैंने पापा की वजह से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. हम घर में कजन्स ये सब बहुत सारे कजन्स थे तो हम गली में क्रिकेट खेलते थे फुटबॉल खेलते थे तो तब से शौक आ गया था क्रिकेट खेलने का.
0: But she soon realized it was rare for girls to play.
4: और कोई लड़की नहीं थी, जस्ट मैं ही थी एंड लड़कों के साथ खेलती थी. बेसिकली एक टूर्नामेंट हुआ था सर, वहाँ पे कोई लड़की अलाउड नहीं थी, बट मेरे सर थे पंकज सर, और स्कूल में ट्रेन करते थे मुझे बॉलिंग का ही, तो उनकी वजह से मैं वो टूर्नामेंट खेली थी एंड मैंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी थी, उस वजह से मुझे एक अवार्ड मिला था. मुझे ऐसा फील होता था कि लड़कियों की टीम ही नहीं है. मैचेस भी देखे हैं तो लड़कों के ही मैचेस देखे हैं, वो विराट कोहली के, सचिन तेंदुलकर के. बट जितना मैं खेलती रही, मुझे पता चला कि हाँ, लड़कियाँ भी खेलती है, तो तब पता चला कि हाँ यार, लड़कियाँ भी स्विंग करती है बॉल, स्पिन करती है बॉल.
0: It was only when she started playing for Delhi's under-16 team that Tanisha found herself batting and bowling alongside other girls.

0: But things were much bleaker for her coach Latika Kumari. When Latika played for the national team, she was only paid a token amount and the matches were few and far between.
1: क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स भी बहुत रेयर होते थे सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप होता था बीच में एक दो सीरीज हो गई तो हो गई वी यूज टू स्टे इन वन हॉल लाइक फाइव सिक्स टीम्स एंड यूजिंग टू और थ्री वॉशरूम्स एंड खाने का भी इतना हाइजीनिक नहीं रहता था हम लोग अपनी बेडिंग खुद लेके जाते थे किडबैग को पिलो की तरह यूज करके फर्श पे ही सो रहे हैं नाउ दीज डेज मोर प्रोफेशनल लेवल पे सारी चीज़ें हो रही हैं कोचिज बोल लो आप एसेंसीज हैं फिजियोज हैं तो स्टेडियम्स में आ रहे हैं प्यार दे रहे हैं और टीवीज पे हम टीवी वगैरह पे हम लोग आ रहे हैं जो कि सपना ही था हमारे लिए कि हम कभी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे
2: Do you ever wish that you are a young cricketer right now?
1: Of course, why not? Because वो dream तब भी था हम लोग ने represent किया country को but आज के time में अगर हम लोग होते तो मे भी हम भी कह सकते हैं कि लोगों को दिख रहे होते अभी
0: Sneh Rana is a player who has seen both worlds. She made her debut for the Indian team in 2014 and has toiled in anonymity for most of her career. But winning the 2025 World Cup has transformed her into a household name.
3: Hello.
2: Hello. So nice to meet you.
3: Thank
2: and congratulations
3: you.
2: On the World Cup win.
3: Thank you so much.
2: So excited to be here with you.
3: Thank you so much. Welcome, welcome.
2: This is your house? This is where
3: yes,
2: you grew up?
3: Yes, yes.
2: Okay.
3: This is our village, Sinola.
2: Okay.
3: Here I grew up. I have a joint family, as you can see.
2: Okay. And everybody's playing cricket.
3: Yes. They are very fond of cricket. See there, little yeah. master.
2: Little master. Perfect. With a very small bat.
3: Yeah.
0: We meet Sneh on a rare break at her home in Dehradun, a city in the foothills of the Himalayas.
2: Of course, winning the World Cup is the pinnacle of anybody's cricketing career. But personally, what does it mean for you? To lift that cup?
3: It was a very huge and special moment because all this time we have prepared for that thing and we have dreamt of lifting the World Cup trophy since many years. Lifting that trophy, it means the world to us. Yes. See, it will definitely bring a huge change in women's cricket. Moreover, the perspective of people and those parents who think that there's no career in cricket, I think the mindset will change. I think many parents will give freedom to their girl child to take up the sport.
0: Though she received nothing but encouragement from her family to follow her dreams, the story of Sneh's beginnings in cricket has a familiar ring.
3: तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और सिक्स फैमिलीज टुगेदर और हम लोग बहुत सारे कजिन्स थे और यही ग्राउंड पे हम लोग खेलते थे वी हैड अ ग्राउंड नियर बाय अर्लियर और तो हम वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलते थे आपस में एंड आई वाज द ओनली गर्ल बाय द वे अकेडमी थी लिटिल मास्टर तो वो खेलने के लिए आए थे यहाँ पे मैच और उनका मैच हमारे गांव के जो 11 होती है उनके साथ था एंड आफ्टर दैट मैच उन्होंने जो हमारे टीम थी तो उन्होंने बोला कि हमारे गांव में एक लड़की है और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है आप उसको प्लीज़ देख लीजिए एंड बाय द वे आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट दैट टाइम तो मैं वहाँ पर पास में एक पेड़ था और मैं उसके पीछे जाके छुप गई सो आई वॉज लाइक कि नो नो नो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले ये ऐसे ही बोल रहे हैं सो दे वर लाइक कि नो कम एंड एक बॉल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आई अपने अंदर एंड देन आई वेंट एंड आई बोल्ड वन ओवर एंड विकेट भी ली थी मैंने उसमें और एंड आई प्लेड वन ओवर सी बींग अ वुमेन क्रिकेटर आई थिंक एवरी फेस पे चैलेंज है पहले तो घर से बाहर निकलने का वो बैरियर था सेकंड था आप क्रिकेट खेल रहे हो बिकॉज उस टाइम पे सब बोलते थे ये बॉयज़ का गेम है यू कांट प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली तो बिल्कुल भी नहीं सो माय पेरेंट्स हैव हर्ड ऑल दोज क्रैप्स
0: इवन अ स्नेह्स टैलेंट टुक हर हायर एंड इनटू द नेशनल टीम हर स्ट्रगल्स कंटिन्यूड
3: सी पहले पैसा बहुत कम था वेमेंस क्रिकेट में अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक की तो इट वाज लाइक अराउंड 1200 रुपीस पर मैच

0: it was very difficult to meet career.
1: Things started to change when the Indian women's team, against all expectations, reached the final of the 2017 World Cup, forcing people to notice them. The next big change came with the Women's Premier League in 2023, followed by the World Cup win 2 years later. In 2022, the sports governing body announced equal pay for international matches. This was expanded to domestic games after the 2025 World Cup win. But with fewer matches scheduled for women, men can still earn up to 10 times more.
0: पहले फ्री टिकट्स होते थे विमेंस मैचेस के लिए बट नोबडी रियली शोड अप नाउ स्टेडियम्स आर फुल वी सी दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर द टिकट्स
1: एट द एकेडमी वेयर स्नेह स्टार्टेड हर जर्नी अ यंग गर्ल इज लर्निंग द बेसिक्स ऑफ द गेम वेदिका हु इज 6 इज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ हर ब्रदर शौर्य
2: अगेन कवर ड्राइव करेंगी उधर से कवर ड्राइव नाइस शॉट शाबाश शाबाश थोड़ा थोड़ा बॉलर को देखें सामने और अपना फुटवर्क इस्तेमाल करके सीधे स्ट्रेट ड्राइव करेंगे आप ठीक है ना ओके स्ट्रेट ड्राइव ब्यूटीफुल शाबाश अभी कवर ड्राइव करेंगे
3: पैर ठीक कर रहे तो गिराना मत बच्चों को
1: व्हेन ट्रेनिंग एंड्स देयर फादर कम्स टू पिक देम अप एंड इनवाइट्स अस बैक टू द फैमिलीज होम
4: मेरा फेवरेट प्लेयर स्नेहरण है मतलब जैसे जब ये बैटिंग करती है जब मैं बोलता हूँ सीधे करिए बैट इसका पीछे जाता है कहते मैं सही डालती अगर सर मेरे को टोकेंगे तो मैं तो तब सही करूंगी
1: द सिबलिंग्स फादर विमल राजपूत वांटेड हिज सन टू लर्न क्रिकेट एंड एनरोल्ड हिम एट द एकेडमी
5: वेदिका का ऐसा हुआ इसको छोड़ने गया साथ में मैं बोलूँ इसको यहीं छोड़ दे मैं नहीं मैम नहीं छोड़ पाऊँगा मैं तो मैंने मैम आओ परेशान कर देगी कि नहीं मैं बोल रही हूँ मैं इसको संभाल लूँगी हैंडल कर लूँगी बस डरते डरते छोड़ा आज है कि तुरंत जाते हैं ये क्रिकेट के नाम से स्कूल से आएंगे अपना फटाफट काम करना सब करना और क्रिकेट जाना है
6: तो जिस टाइम पे हमारा कॉलेज और स्कूल का टाइम था उस टाइम तो अपॉर्चुनिटीज में इतना नाम सुना ही नहीं था कि वुमेन्स का क्रिकेट होता है एक्चुअली मैंने मैचेस देखे हैं जैसे हमारी स्मृति मंदाना जी हो गई स्नेहा राणा है तो इनको देखती हूँ तो अभी लास्ट जैसे मैच हुआ था जो ये जीती है इंडिया तो इसमें इन्होंने हरमनप्रीत जो इनकी कैप्टन है उन्होंने जो लास्ट कैच किया था तो वो तो आउटस्टैंडिंग मतलब वो तो तारीफ उनकी जितनी की जाए उतनी कम है तो वो चीज़ें हैं ये चीज़ें देख के एक प्राउड फील होता है कि हमारे घर में भी बेटी है तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी भी उस तरीके से अपना नाम रोशन करे
1: इंडिया इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ क्रिकेट एकेडमीज वेयर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स ट्रेन बट अंटिल अबाउट अ डेकेड अगो मोस्ट डिडंट अलाउ गर्ल्स टू जॉइन दिस एकेडमी इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ हरियाणा Shefali Verma, one of India's star World Cup players, had to cut her hair short and pretend to be a boy. Now, more than 200 girls come here to train.
7: 10 साल की है मेरी बेटी तो मेरी बेटी को एक साल हो गया यहाँ पे आते हुए लगभग लड़के ही हैं लड़कियों को कोई ही फैमिली ऐसा जो स्पोर्ट्स करती है मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ मेरे पूरे गांव में मेरी एक बेटी है जो क्रिकेट कर रही है
8: देखो मैं भी यहाँ पर आई ना तब मुझे भी नहीं था कि गर्ल्स इतनी विमेंस टीम इतनी ज़्यादा पावरफुल है बट यहाँ पर जब हमने देखा ना कि शेफाली वर्मा ने जिया तो उसके बाद से इस एकेडमी से इवन उसके नाम से मतलब यहाँ पर गर्ल्स ने इतना ज़्यादा एडमिशन लिया क्योंकि जब एक वो कर सकते हैं तो वाई वी कांट कि हम क्यों नहीं कर सकते
1: अनन्या उपेंद्रन इज ऑन द हंट फॉर द नेक्स्ट राइजिंग स्टार A former player, Ananya, is now the lead scout for Delhi Capitals, one of the most prestigious clubs in India.
9: So tell me, you're at an academy like this. When you come here, what are you looking for?
10: So I think one is obviously player techniques, whether the basics are good as bowlers, as batters. I think getting runs in games, getting wickets in games. And just temperament under pressure is kind of what you're looking for.
11: Yes.
1: The sudden rush of investment, interest and infrastructure for women's cricket has come as something of a surprise for Ananya.
10: Until maybe even 2 or 3 years ago, the women's cricket community felt very small. And often when you land up in stadiums, you just see families and maybe 100 people who are not related to the players. I was at the World Cup final and I remember seeing that packed stadium thinking, I don't know when this change has happened. It's felt like a really long time, but it's also felt like it's just happened overnight. I couldn't believe what I was seeing.
1: An estimated 2,000 girls and women now play professional domestic matches in India, compared to around 8,000 men. But the number of female players has doubled in the last 8 years. So too has the number of professional matches for women.
10: When I was playing, you just have an under 23 and a senior tournament. Now they've added under 15, there's an under 19, there's an under 23, and there's seniors. That's, of course, meant that you keep talent in the system and that pipeline is much more secure.
1: These changes have been a long time coming. Despite being the richest organization in world cricket, the Indian Cricket Board, the BCCI, has been one of the slowest to develop the women's game. Take the WPL. Back in 2008, the BCCI revolutionized the sport when they introduced the Indian Premier League, or IPL, a club-based men's tournament that brought unprecedented money and viewership to the game. The concept spread across the world. By 2016, most major cricketing countries boasted a women's version of the tournament.
2: Cheetah, go straight.
1: But in India, it would take 7 more years for the WPL to take shape.
10: We reached a World Cup final in 2005 before we were under the BCCI. We reached the next World Cup final 12 years later in 2017. When we didn't have any of these facilities. So I feel like a lot of times when you succeed despite the system, the expectation is that you will continue to succeed. It took a few failures to realize that actually we can't keep playing catch up. I think it's unfortunate that you have to win before people take you seriously, but sometimes that's how it works.
1: Back in Chandigarh, Captain Tanisha and her Delhi teammates have won another game at the Under-23s tournament. But they won't be resting easy. It's the night of the WPL auction.
12: We all hope that it will be picked. I told her on her face that she's expressionless and happy. So today it was like that. It's not like anything is going to happen. And the best thing is that she's in the process. That is very important.
9: आपको टेंशन हो रहा है कि आपका टीम का
12: बिल्कुल बिल्कुल होता है मैं तो ये चाहती हूं कि जितने भी नाम है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम में पिक किए जाएं
10: You know, the auction can be life-changing, I think, for players, just the opportunity. There is a lot of excitement around it. Of course, there is plenty of anxiety because you don't know whether you're going to get picked or not. Having to wait, I think, for your name to be called is the most anxious that a player could get.
1: The anxiety is palpable as the players gather to watch the auction live on TV.
13: 40 lakh for the UP Warriors, 45 for Delhi.
1: There are 5 girls from the Delhi Under 23 team whose names are on the auction list.
14: Top order aggressor backing crisp driving and fearless intent.
15: No bids in the room at all. Last chance. And the player will then remain unsold.
13: Delhi, that's for you for the
1: As the event unfolds, the stress rises. Tanisha and her friend Paronika decide to switch off the TV.
9: So how come you left the room and came back to your own?
16: Yeah, sorry, I was a little nervous. That's why I came to my

0: बहुत ही स्ट्रेसफुल प्रोसेस है.
1: तब भी ऑक्शन नहीं देखे देखा था, पेरेंट्स देख रहे थे ऑक्शन, एंड जो भी चीज चल रही थी वो पेरेंट्स बता रहे थे.
0: डू यू टॉक अमंगस्ट योरसेल्व्स अबाउट नॉट बीइंग पिक्ड, बट व्हाट, हाउ यू गेट बैक ऑन योर फीट?
1: फ्रेंड्स से बात करते हैं, इवन कोचेस से बात करते हैं, वो हमें बैक करते हैं बेसिकली अगर हमारा लो टाइम भी है. एंड अगर सर सेलेक्ट नहीं हुए उससे कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि स्टेट मैचेस तब भी खेलने हैं एंड सब कुछ तब भी करना है, मेहनत तब भी करनी है. वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, बट उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो होप करते हैं एंड उसके लिए ही मेहनत करते हैं.
2: गरीब कहीं की उठा नहीं सकता.
3: The evening ends in bitter disappointment for Tanisha and her teammates. None of the five will play in this year's WPL. But for another young girl, the auction brings great joy.
4: 10 lakh please for Diya Yadav. 10 lakh, do I have any bids for Diya? At 10 lakh, do I have a team interested at all? At 10 lakh. Thank you, Delhi Capitals. At 10 lakh, we have Delhi Capitals bidding.
3: At 16, Diya Yadav becomes the youngest player ever to get a WPL contract when she's bought by the Delhi Capitals. A few weeks later, we meet Diya at the Capitals training camp in the coastal town of Banolim in West India, where she joins many of India's World Cup winning players, including Snehe and Diya's idol Shefali Verma.
5: अच्छा लग रहा है जब हरियाणा के केस ग्रो करते हैं, देख के अच्छा लग रहा है. मैं बहुत मिस करती हूँ तुम सब लोगों को.
6: मेरे को भी,
5: सबको, सब हरियाणा वालों को. मैं भी चाहती हूँ तुम लोग ग्रो करो और ज्यादा प्लेयर्स आए हरियाणा से. मुझे
0: what is that experience like for you? Do you get nervous or is it a lot of fun?
6: It's fun actually. I don't get nervous with people. I only get nervous in front of camera. So I'm really looking forward to play with a lot of people actually, like Shefali Di actually, and Laura Vulvat, and like Cappy. Sharing the field with them, sharing the dressing room with them is a really big thing for me.
3: Delhi Capitals is one of the most successful clubs. They've played in the men's IPL since the league started in 2008 and been finalists in every WPL season so far. This is Snehe Rana's first season playing for the club and fourth time playing in the WPL.
7: WPL's aane se bahut sare changes hue hain, because बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको इंटरनेशनल टीम में कॉल अप नहीं आता है. उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने को प्रूव करने के लिए, या सो मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. आई थिंक वो एक मोटिवेशन भी देता है कहीं ना कहीं.
6: लाइक इट्स बीन वन वीक विद द टीम एंड बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी सीखने को मिल रहा है द सपोर्ट स्टाफ एंड सीनियर्स एज वेल. रोज प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ सीखते हैं, लाइक टॉकिंग टू आवर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिस्ट.
3: दिया रिप्रेजेंट्स अ न्यू फिनोमेनन इन वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया. गर्ल्स हु हैव एंजॉयड सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी एट एवरी स्टेप.
6: बीइंग अ गर्ल क्रिकेटर, आई हैव नेवर फेस्ड प्रॉब्लम्स लाइक दैट. लाइक आई हैव ऑलवेज गॉट फुल सपोर्ट बाय एवरीवन. लाइक माय पापा, ही इज अ फुल टाइम मैनेजर फॉर मी, एंड Mama, Papa are really happy and really proud that I'm representing WPL, like I'm representing Delhi Capitals this year.
3: Her parents both work in the IT sector and left their jobs in the city of Pune to move to rural Haryana, just to be closer to one of the country's best cricket academies.
8: Abhi apne khana khaya?
9: नहीं
8: खाया अभी. अच्छा, आज आपका सेशन था कोई?
9: स्विमिंग सेशन था.
8: स्विमिंग सेशन, यू डन विद इट?
9: यस.
8: वो चाइल्डहुड से ही बहुत एक्टिव थी. स्केटिंग क्लासेस दिखी तो मुझे स्केटिंग करनी है, फिर बास्केटबॉल करनी है, फिर उसने बैडमिंटन खेलना था, उसके बाद फिर उसने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया. लेकिन उसको जो भी देख